भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और हम बार बार जिक्र करते रहे चले आ रहे हैं ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से कि अपना पर्यावरण बदल रहा है। आज भी अभी भी समय है कि हम इस पर्यावरण के प्रति अभी भी जागरूक हो और अपने साथियों से भी कहें कि आप भी जागरूक हों और साथ साथ में लोगों को भी बताएं कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अपना बदल रहा है और इस पर्यावरण का बदलाव ये संकेत देता है कि पर्यावरण जो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है। कारण हम और आप सब जानते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, साथ में कार्बन जो निकलता है गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन जो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में

0: हमें सोचने की बात है कि हमें इसको किस नजरिए से देखना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम शुभ कल में आज हम कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी से लाना ये हमें सोचना होगा, क्योंकि अब पृथ्वी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इस ग्रह और उन सभी जीव प्राणियों जिन्हें इस आश्रय प्रदान करता है और खुशहाली के प्रति उत्पन्न चुनौतियों के बारे में वैश्विक एवं जन जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता प्रकृति और धरती के साथ स्वभाव प्रोत्साहित करने के संबंध में 1992 की रियो घोषणा में जताई गई थी। इसका लक्ष्य मानवता की वर्तमान और भावी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन कायम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या जो हम बताने जा रहे हैं 63/278 के जरिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और भारत विश्व में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में से एक है, जहां पर 37.70 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र यानी 2011 की जनगणना की उसकी अपेक्षा पे बता रहे हैं, जो कुल आबादी का 33%। अनुमान है कि 2030 तक भारतीय शहरी जनसंख्या के स्तर पर करीब 40% बढ़ोतरी होगी। इसकी आबादी 58% यानी 58 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान 2015 से 2030 की अवधि में भारत की शहरी आबादी में 16 करोड़ लोगों की वृद्धि होने का अनुमान ऐसा लग रहा है और जताया जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। विशाल आबादी के कारण भारत वर्तमान ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। 2019 में जब भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3.7 गीगा टन और इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 2.7 टन था, परंतु भारत का ऐतिहासिक संचय 1870 से 2017 उत्सर्जन बहुत कम है, जो कि अमेरिका में 25%, यूरोपियन संघ में 22% और चीन में 13% की तुलना में 3% है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभाव से सर्वाधिक पीड़ित देशों में भारत 7वें स्थान पर था। भारत ने देश के रूपांतरण में शहरों की भूमि की पहचान की है। सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, उन्नतशील और टिकाऊ बनाना, और लक्ष्य संख्या 13 यानी जलवायु परिवर्तन और उनके दुष्प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना को क्रियान्वयन करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप भारत ने शहरीकरण की प्रक्रिया मजबूत बनाने के उपाय पहले से शुरू कर दिए हैं, ताकि शहरों को अधिक सक्षम एवं समावेशी एवं कार्बन में कमी के साथ टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के बारे में 2008 की राष्ट्रीय कार्य संख्या यानी NAPCC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित महत्वाकांक्षी एवं प्रतिबद्ध योगदान INDC कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल है इसमें। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये सभी उपाय स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को इर्द गिर्द केंद्रित करती है। इनमें से समुन्नत शहरी केंद्र, कचरे से संपदा को बढ़ाना देना, सुरक्षित एवं स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क की स्थापना करना, प्रदूषण में कमी और वन एवं वृक्षों का अक्षादान के माध्यम से कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों, आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटी छोटी बिंदियों पर प्रकाश डालेंगे, चूंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं, पर्यावरण सुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: पर्यावरण बचा लो भैया, मान लो कही

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम उन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं, खास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितधारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है, जिसमें 2030 तक समावेशी, सुरक्षित, सम्पूर्ण और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है, जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है, इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितधारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और UN हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसमें भयावह अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन और अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समन एवं अनुकूल कार्यों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम
और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण अपवृष्ट प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं और जन भागीदारी के हित का हित धारकों के बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं, पर्यावरण श्रोड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: भैया प्रेरणा कटैयो, अभी आपने मस्ताना दिनेश मस्ताना और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। साथियों, अभी भी समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास करें, खासतौर पर उन शहरी क्षेत्रों जहां पर क्षेत्रवासी हमारे निवास करते हैं। शहरों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण वहीं से फैलता है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला और चाहे वो चिमनियों से धुआं निकलने वाला, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत सरकार का क्या आश्वासन है शहरी क्षेत्र के लिए, भारत सरकार के मंत्रालय किस तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए काम कर रही है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए फरवरी 2019 में जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन फ्रेमवर्क जारी किया था, जो शहरों के लिए जलवायु कार्रवाइयों की दशा में एक मार्गदर्शन ढांचा है और जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनके प्रति जोखिम कम करने के लिए मदद करता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर मिशन, अमृत, PMAY, शहरी परिवहन आदि शहरियों को जलवायु स्मार्ट होने के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायता करेंगे। देश में जारी विभिन्न मिशन, विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत न केवल शहरों को सुविधाजनक बनाने बल्कि शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जलपूर्ति, परिवहन, बिजली, नल जल, उपचार, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं उनका प्रबंधन करना, बढ़ती मांगों के को अधिक संसाधन कुशल, कम कार्बन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और बड़े बात बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी आवास परियोजना में थर्मल कंफर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इस तकनीकी से प्राकृतिक जो बातयान तापमान और आर्द्रता नियंत्रण में मदद मिलेगी, इमारतों की आवासीय गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाना संभव होगा। इसलिए योजना एवं आवास कार्य नीतियों के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो समावेशी स्वस्थ एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा दे सके। परंतु इन हरित भवनों की लागत चूंकि सामान्य घरों की तुलना में थोड़ी अधिक है, इसलिए हमें सामूहिक आवास परियोजनाओं में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने के लिए उपयुक्त हरित वित्त शोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें हैं जो आपको हम कार्यक्रम शुभकल के माध्यम से बताने जा रहे थे, और भी बातें हैं जो चूंकि अब समय भी हो रहा है कार्यक्रम शुभकल से जाने का, अगले कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो दू करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब का है तुम बात कर रहा था अपने साथ
1: नहीं
0: से।
1: नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी अच्छा। श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ वो तुम
1: नहीं
0: कह दू
1: नहीं।

0: युवा साथी जो सोचत हैंगे के मनीष भज्जा या कार्यक्रम को लेके आत हैंगे
1: और हमें मतलब जो जानकारी देंगे। नहीं नहीं जो मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ये बात को तो मैं बुरा लगा हुज्जे सो तुम बीच में हमारी बात काटन लगे।
0: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती हैगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछे थेंगे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो होंगे ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो।
1: अरे बस बस बस बस मनीष भैया बस बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं।
0: जो कार्यक्रम का नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
1: ये यानी के केबी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
0: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करने जा रहे हैंगे तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते है व्यक्तित्व विकास जो रहते है यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था ये चीजें को सीखने में। यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियों में ये चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे।
0: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं
1: मतलब हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो।
0: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही हैं इसमें सुना थेंगे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैंगे।
1: फोन तो उठा लो पहला वो।
0: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन हम अपने साथी उनको बताबो चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहेंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
1: अब फोन कटगो आप काय में से उठा रहे।
0: चलो हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही है चलो उनसे बतकाव अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
1: तो बात तो हम ही करें आप खो ना करें।
0: चलो आप ही कर लो रूपा जी को फोन है वो आप ही बात।
1: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से कभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए है तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब।
1: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा वहाँ से फिर हम गांव में आ गए रानीपुरा गांव में वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे फिर दो पैसे भी मिलने लगे
1: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
1: जी। तो रूपा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा कैसे आपने उसमें अप्लाई किया कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ वैसे गाँव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
1: जी
2: उनसे हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने बुलाया उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला फिर एक गाँव में आ गए तो बस ऐसे आगे बढ़ रहे हमें बहुत अच्छा लगा है।
1: जी, तो आपने

0: जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
1: नहीं, फ्री में सीखा।
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
1: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
1: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिली हुई है, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ खर्चे होते, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
1: हाँ सर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
1: हाँ,
0: बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसे पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे, उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने
0: जी। कैसे मतलब, बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर
1: हाँ।
0: इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए?
1: हाँ,
0: कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो, और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने दो पैसे गांव के भी बचे और दो पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई है बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो, कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे भी।
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है, इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी,
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते,
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज, तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब, तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई, हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछ पूछा हमने कि ये चीज क्या है,
0: जी
1: तो हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं, किया अभी नहीं, नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया
0: जी,
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
1: हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा तो गाँव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिल के रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे, अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
0: जी,
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
0: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे आगे हमें पढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाए, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाए गाँव छोड़।
0: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गांव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती हैं, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
1: लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
1: इसलिए सोच रहे हैं। लेकिन गलत सोच है वर्षा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, यहीं की यहीं रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।
1: जी
0: रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे, लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान,
0: जी
1: बराबर है।

0: भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: कई बार साथ हम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताए।
1: हाँ,
2: हम सोच ही रहते हम कमें में आज कौन सा व्यवसाय दें कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई दी कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है शुरुआत कर रहा है तो उसके लाने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा थे, उसके नाने मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनो परिवार को भरण पोषण कर रही। वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा सबसे बड़ी बात पता का हैगी जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे वो जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना सीख भी, वो होते है ना नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते जो बहुत कम लोग होते जो सीख पातेंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम करने लगी हैंगी। तो कैबे को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करबे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते ही हैंगे, वो सोच भी के संगे अपन कैसे एक छोटे सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा थे वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती, हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जे मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हैं और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी अब हाँ? तनक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोकगीत सुनन दो उनको, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
1: हाँ, मतलब तुम तो मैं बोलन दो सो कछु नहीं है, तुम बोला
2: एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेते हैं और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सो गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम ही दे सकते होगे, कहे गया हम बोला सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे, साथी अनखों बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे, कैसे हैं, जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे, तो अपन ये चीजें आपको बता देंगे, जो बातें आपको बता देंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में, और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे, यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
2: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो उनके लाने हमारा नंबर जो है वो,
2: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ। और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास
0: जानत है?
1: नहीं नहीं जानत हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहतेंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, वो जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है, रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चांद इतने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया बैठ के सुन सका थेंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सका थे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सका थेंगे सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी

0: महत्वपूर्ण है, और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।
1: बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
2: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
2: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
2: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सरपंच

सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चला

0: आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से
1: पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको।

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए हैं पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हूँ तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे,

0: से सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए, और क्रियान्वयन मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है, विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें अब जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, यह सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे एक कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है, और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं, और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समर्थ स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
4: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
5: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं

0: लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा। क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम नहीं, ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती, ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो, या फिर उप सरपंच के रूप में हो, या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है
1: 92-19-20-77-49।
0: तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

वो पढ़ रहे हैं जो फिल्में, जो अखबार में नहीं।

अजमेर जाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।

0: हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं। झंडा तिरंगा हाथ में लेकर

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों

0: की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था, और ये विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनित रोग हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दूवर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदुरोमिलासिता, शूंडिलासिता तथा उकता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदुरोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है, और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है, और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के 1 माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदुरोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैम, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए? मैम,
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें
0: जी
1: प्रमुख रोग मैंने आपको 3 बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, शूंडिलासिता और उकता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ।
0: जी
1: तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो

0: वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारक हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो तो मेटालैक्सिन और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिन और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाएं तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट है इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: जी जी।
1: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती है जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ, और इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं क्षेत्र
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल जी मैम।
0: में।
1: और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इस
0: जी
1: बात
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट अल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वेराइटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम,
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट
0: जी जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी।
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर

0: है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है।
1: जी
0: और एक नो डाउट, अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि
1: जी मैम,
0: खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है,
1: जी
0: कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है।
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: ये सारे कारण हो सकते हैं
1: जी मैम,
0: सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं,
0: जी,
1: क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था। वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह, इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम,
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे,
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है।
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम,
0: जहां शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और
1: बिल्कुल,
0: जहां शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और
1: जी मैम,
0: इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो है वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और
1: जी,
0: हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए, तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी मैम,
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं
0: इसका जो
1: मैम
0: है
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम,
0: एक और
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही बात
0: शिक्षित
1: कही
0: हो
1: है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा
0: करें।
1: विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: क्योंकि
1: समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती,
0: होंगे,
1: जी
0: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी
1: जी
0: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल,
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्ती से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम,
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था। तो
1: जी मैम,
0: अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा, तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो

0: आने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है वो
1: जी बिल्कुल।
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे।
1: जी मैम
0: तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं
1: जी मैम
0: तो जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम जी मैम
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई मिला नहीं जा रहा था,
1: जी मैम
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम। इसका मैम बस
0: तो
1: लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा, इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
1: जी मैम
0: उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद,
1: चलिए थैंक यू मैम।
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: चलिए थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन्म के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन को और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गाती हैं तो देखो कितनो सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं और वो गारी विधा में जो चीज दर्शाई जात गाई जात बा कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों, आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों, देर ना करत भाई सुनत हैं बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो और लेते हैं इको आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, घर होती आदर कर लेती। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सबजन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो। ई गारी को गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथी इनकी गारी इनखों।

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गारी अपन सब जन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिटिया दइयो तो धन दइयो, राम गरीबी असी दइयो ना। देखो दोस्तों कितनों प्यारी जापन ने गारी सुनी, ई गारी को आनंद लाओ है। ई गारी को गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों ये गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथियों की और गाई भाई गारियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।

बिल्कुल साथियों, हमने खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सबजन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ई गारी खो गारी हती सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों, एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समधी हमें भूलना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। आप दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गए है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ए कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

कब से जब से इस हसीना ने जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: ना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे बोल लगो, बताए कैसे यार मोहब्बत मत करना, यार मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यार मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल तलक तुम

ना, इसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब

बारी हमारे गांव की। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम बारी हमारे गांव की। दोस्तों बारी हमारे गांव की कार्यक्रम में अपन एक गांव की ओर चलते हैं और उ गांव की स्थिति को अपन जानते हैं कि ई गांव में का व्यवस्था बिजली की है, का व्यवस्था पानी की है, का व्यवस्था साफ सफाई की है और का व्यवस्था शिक्षा की है। सो दोस्तों जी सारी बातें अपन ई कार्यक्रम में करते हैं। अब दोस्तों यही बातन की संग

प्रसंग है आज अपन चले बरुआ सागर, और बरुआ सागर में अपन मिले भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से, और उनसे जाने के बरुआ सागर में जो जितने जी रथ हैं बा मोहल्ला में का व्यवस्था पानी की है, का साफ सफाई की है, और बा कौन सी व्यवस्था नन्या जो इनके दिल में खटक रही है। सो दोस्तों आओ जानते हैं इन भैया की बात अनखो। सो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में। सो भैया मुन्ना लाल जी से मिलवे से पहले आओ एक बढ़िया से गीत को सुन लेते हैं और गीत को आनंद लेते हैं।

0: बिल्कुल, जो तीन दना को मेलारी रजे है हंस अकेला। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवार जी। अब दोस्तों एक गीत के संगे संगे अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में चले थे अपन बरुआ सागर की ओर। और बरुआ सागर में अपन चले थे सिनोरा मोहल्ला में, जितने मिलत हैं अपन भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से। सो दोस्तों आओ मिलते हैं भैया मुन्ना लाल कुशवाहा जी से और जानते हैं सिनोरा मोहल्ला की हालत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
1: हमारा नाम भैया मुन्ना लाल कुशवाहा।
0: मुन्ना लाल कुशवाहा जी, अपन कौन से गांव के हैं?
1: बरुआ सागर सिनोरा मोहल्ला किले के पास रहते हैं।
0: किले के पास रहते हैं,
1: सारंगी मास्टर।
0: चलो,
1: के नाम से हमें जाना जाता है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, यही क्रम में अपन बात करें अपने गांव के विकास की, ठीक है? तो अपने जो मोहल्ला है, तो अपने मोहल्ला में बिजली की क्या व्यवस्था है अगर बात करें तो?
1: बिजली तो आजकल जो है कि जैसे वर्षा का समय चल रहा है तो कभी कभी जैसे फॉल्ट हो जाती है तो रात भर नहीं आती है।
0: अच्छा।
1: वैसे सरकार भी बढ़िया चल रही है, लाइट भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारी लाइट के लिए।
0: बहुत अच्छी बात,
1: विकास तो बढ़िया हो रहा है हमारा। शौक सफाई सब ये तो हर चीज से चल रहा है।
0: अच्छी बात है। एक क्रम में अपन बात करें पानी की व्यवस्था की, तो आपके तो मोहल्ला में क्या व्यवस्था है पानी?
1: पानी के लिए हम लोगों की व्यवस्था भैया हेडपम्प लगाए हैं।
0: अच्छा, हेडपम्प लगे?
1: हेडपम्प लगे हैं, नजदीक ही नजदीक हेडपम्प लगे, दो दो इकट्ठे लगे।
0: हाँ।
1: और खराब हो जाते हैं तो हमारे मेंबर लोग जो है कि उसको ठीक करवाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई बात नहीं करवा पा रहे तो हम लोग भी आपस में पैसे जोड़ लेते हैं, अपने ठीक करवा लेते हैं।
0: और कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काहे कि कछु आदमी जो देखो जात के सरकारी संपत्ति को जो देखत के बाकुन अपनी है।
1: नहीं, अपनी ही है वो
0: है?
1: अपनी खुद की है।
0: सोचना चाहिए।
1: हाँ, अपनी है खुद की।
0: और जैसे के हेडपंप लगो, पूरा मोहल्ला के लड़का लगे खटपट खटपट।
1: नहीं ऐसा नहीं।
0: अगर काउन रोको ही है तो उसे भी लड़ भी पड़ते पिताजी को।
1: नहीं, अभी हमारे बगल में हेडपंप लगवाया, बिल्कुल सुरक्षा से लगा है हेडपंप।
0: हाँ।
1: तो कोई ना खटपट करेगा।
0: हाँ।
1: ना उसको गंदगी करेगा कोई।
0: अच्छा,
1: शौक सफाई से बिल्कुल, तुम्हें कचरा भी नहीं मिलेगा हमारे गरबा के अंदर।
0: बिल्कुल
1: ना वर की नली बिल्कुल एकदम साफ सुथरी मिलेगी।
0: बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी बढ़िया साफ सफाई की बात है, और साफ सफाई होना जरूरी है कि नहीं?
1: तो अब हम
0: हाँ
1: अपने हमारे उस्ताद धनीराम कवि की जिनकी लेखक थे।
0: हाँ।
1: और इसी साल अभी वो खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे बरुआ सागर के ऊपर एक गीत लिखा था, तो उसको हमने गाया है, वो गाते भी हैं, वो गाते रहेंगे आपकी कृपा रही तो। अरे मोरो मन रंगीर भोला, मोरो मन रंगी लाल, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी लाल, देखो बरुआ सागर आला, आगे किला सरोवर आला, ऊपर लक्ष्मण जी की साला, नीचे बेरो बरुआ नाला, जहाँ हो गए कीर्तन मैनन अठारा, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी लाल, आगे बनो कंपनी बागो, जिसमें फूलन भरी सुहागो, पौधे बिकता बना विभागो, मोटर जा रही धमना ये टोला, मोरो मन रंगी भोला, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी लाल, देखो मंडी बनी विशाल, बिकता सब लोगों का माल, अब सुन लो वाड़त के हाल, भर भर ठेला जा रही आ रही कंदोला, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी लाल, आगे मिल है भरो बजार, दाढ़ी बनती कटते बार, नर नारी कर रहे रोजगार, बिक रही खोरे डबल पिछोरा, मोरो मन रंगी भोरा, मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी लालो झांसी जिला हमारा खासो बरुआ सागरो हैरानासो के रे धनी राम जी दासो पार किने चे बसो सिनोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी भोरा मोरो मन रंगी लाल।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, पार किने चे बसो सिनोरा। तो आपको जो सिनोरा है तो इमें अबे आपको कछु ऐसी चीज लग रही कि जो चीज ना होवे या बहुत अच्छी है, बा कौन सी चीज है आपके मोहल्ला में?
1: भाई मोहल्ले के पास में से जुड़ा हमारा किला,
0: हाँ
1: किले के पास ही हम रहते हैं, तो घूमने वाले आते हैं पर्यटन घूमने के लिए। हम तुम भी किले में जाते हैं, प्रतिदिन भी जाना चाहें तो प्रतिदिन जाते हैं, तो किले में बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत अच्छा किले में लगने लगा। और लाइट की व्यवस्था किले में हमारी, बाहर भी लाइटें दो दो कदम पर डिब्बे लगे हैं, तो पूरा किला रात में ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हनुमान जी वो पहाड़ लेकर के जा रहे हों। अंदर बाहर लाइट, पानी की व्यवस्था, फूल फलवारी, बहुत अच्छा लगता है। आगे अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है, तो कथा भागवत वहाँ भी होती रहती है। हम तो बैठते हैं 24 घंटे पड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे कर्मचारी भी बढ़िया, चौकीदार लोग अच्छे लोग वो भी है।
0: तो अच्छा आपको कोनो ऐसी बात और ऐसी कोनो खराब बात तो नहीं खल रही कि जो आप के वो चाह रहे हो कि जो काम और होते हो जाए तो हमारा मोहल्ला बिल्कुल अच्छी तरीका से रहे? कोनो ऐसी बात आप अगर आपको खटक रहे हो जो काम
1: केवल हमारे मोहल्ले में रहने जैसे कि व्यवस्था एक चीज की नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है कि जैसे मोहल्ले में ब्याह सगाई शादी होती है तो हमारी तुम्हारी ब्याह बारात आ गई है तो उसको कहाँ रखेंगे हम?
0: सही बात,
1: केवल हमारे पास मोहल्ले के अंदर ये व्यवस्था नहीं है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी बड़ी बात एक रह गई जो आपके मोहल्ला में, अगर जो काम हो जाए तो बिल्कुल सभी तरीका से आपको
1: इसकी बहुत जरूरत है। और अच्छा सरकारी है। अगर ये कहीं बन जाए हमारे वहाँ जमीन पे तो बहुत सुविधा हो जाएगी।
0: बिल्कुल, काहे के जो सामाजिक कार्य है और इसमें सभी मोहल्ला वाले
1: सबका काम चलेगा, हम तुम भी बैठो।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: कोई भी आ जाए, चार रिश्तेदार हैं, अगर बैठाना है लेटाना है घर पर व्यवस्था नहीं है किसी के पास तो अपन खोल के ताला वहाँ बैठ सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, केवल अच्छी बात
1: केवल इतनी परेशानी है हमारे मोहल्ले में।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, तो जा देखो बहुत बड़ी बात ने करके आई कि अगर जो काम और हो जाए तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से। अच्छा वो यही क्रम में अपन बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो बाली बच्चन की लाने स्कूल कितनी दूर पे है?
1: पास ही में है स्कूल तो।
0: अच्छा तो स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है?
1: स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, पास में स्कूल है, प्राइवेट भी स्कूल है, सरकारी भी स्कूल हैं।
0: तो मतलब व्यवस्था देखो,
1: व्यवस्था हमारी बढ़िया है
0: शिक्षा की, तो
1: शिक्षा की अच्छी है।
0: और एक क्रम में
1: खेलने कूदने के लिए लड़कों बच्चों के लिए हमारा जो हमने बताया किले पर भी जाते हैं, तालाब पर भी जाए, झरना पर भी आए, बाग बगीचे हैं, कंपनी बाग में खूब झूला लगे हैं, खूब झूलो।
0: और एक क्रम में बात करें अगर अस्पताल की, कोई रात बिराते अगर बीमार होते तो कितने अपन ले जाते?
1: ये प्राइवेट अस्पताल है हमारे बरुआ सागर में बहुत ज्यादा भी है।
0: अच्छा,
1: तो अपने जब गांव के हैं या कोई बाहर का आ जाता है किसी की रिश्तेदारी, उनने कहा भैया चलो हमारे रिश्तेदार हैं, चलो तुम खुलवा दीजिए, हमें तो बेचीनत नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी व्यवस्था हो जाती
0: है,
1: मदद
0: कर देते
1: हैं रिश्तेदार
0: की मदद,
1: अपन लोग कर देंगे।
0: चलो बहुत अच्छा,
1: क्योंकि अपन गांव में रह रहे तो डॉक्टर लोग चीनते हैं, जानते हैं, अपन को जाना ही है रोज।
0: बिल्कुल सही बात,
1: तो डॉक्टरों की व्यवस्था है, अच्छे डॉक्टर भी है। और हमारे जो बद्री प्रसाद जो है महाराज, जो महाराज जी अस्पताल वाले, वो भी हमारे नजदीक आई है, तो 11-12 बजे भी वो तो जग जाते हैं, इलाज करते हैं।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, तो व्यवस्था कुल
1: मिलाकर व्यवस्था हमारी
0: बढ़िया है।
1: हाँ, बढ़िया है,
0: तो सब साफ सफाई मोहल्ला में है,
1: साफ सफाई है, बढ़िया है।
0: और रहन सहन
1: बढ़िया है हमारा,
0: ऐसे तो नहीं
1: नहीं झगड़ा वगैरह नहीं होता है कभी, कोई किसी का नहीं,
0: गाली गलौज कर
1: नहीं, नहीं कभी नहीं होता, नहीं नहीं,
0: तो ऐसा भी नहीं
1: है, नहीं जी कुछ नहीं है।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए,
1: ऐसा है। हम लोगों का केवल गाने बजाएंगे ज्यादा ज्यादा, गाएंगे बजाएंगे केवल,
0: बात है बहुत अच्छी बात है। केवल कमी की है कि सार्वजनिक स्थान
1: कि जहाँ चार लोग हम पानी बरस जाए तो कहाँ बैठ जाएंगे।
0: सही बात है, बहुत
1: केवल इतनी व्यवस्था हो जाए सरकारी तो उसके लिए हम बहुत खुशी मनाएंगे, हम मोहल्ला वासी सब लोग
0: बिल्कुल
1: उनके लिए धन्यवाद करेंगे, सरकार को भी हम धन्यवाद करेंगे।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भैया, तो आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के हमें दही खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी भाई साहब धन्यवाद है, नमस्कार।
0: देखो दोस्तों जयते भैया मुन्नालाल कुशवाहा जी जो बरुआ सागर सिनोरा मोहल्ला के हते, और इनसे अपनी बातचीत चल रही थी कि सिनोरा मोहल्ला में कौन सी व्यवस्था आपके लाख अच्छी है और कौन सी व्यवस्था नन्या जो हो वो जरूरी है। सो दोस्तों ये बातें भैया जी ने बताई हैं कि शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, लाइट बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन एक कमी हमें लग रही है इनके अंदाज से जो ये बता रहे हैं कि हमारी कमी वह है कि हमारे मोहल्ला में सार्वजनिक विवाह स्थल नैया जो हो वो बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों भैया जी ने अपने मन की बात बताई है अपने इस कार्यक्रम में। सो दोस्तों अगर आप भी ऐसे अपने मन की बात बतावो चाहें इस कार्यक्रम में, अपने गांव की बात बतावो चाहें, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 94-25-14-17-26। सो दोस्तों जो नंबर लगा के आप सीधी बात हमसे कर सकत और आप बता सकत कि माता दीन भैया जी आप हमारे गांव में भी आओ और ऐसी हमारे गांव की जानकारी भी दो। सो दोस्तों हम आपके गांव में भी आए हैं और आप सब जन के गांव की जो खास बातें हैं वे बातें आपसे पूछें और वे बातें इतने रेडियो से अपने प्रसारण करें। सो दोस्तों आपके गांव की भी बात चल है। अब दोस्तों यही क्रम में आप और कह रहे हो कि देखो माता दीन भैया जी ने ये बातें बताई हैं और दोस्तों अब यही बातन के संगे संगे अपनो आज कोई कार्यक्रम से जावे को समय शुरू हो रहा है। सो दोस्तों अपने ई कार्यक्रम से जावे के लाने हम आपसे कह वो फिर भी चाहें कि अगर आप और अपने गांव की बात बताओ चाहें तो जरूर हमें बताएं, और अगर चिट्ठी पत्री द्वारा बताओ चाहें तो चिट्ठी पत्री द्वारा लिख के भी बता सकत हमें, आप चिट्ठी भी लिख के बता सकत। चिट्ठी लिखवे के लाने आप और लिख लो हमारे पते को। हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो दोस्तों ई पते पे आप और चिट्ठी पत्री हम तक भेज सकत। आप साथियों यही क्रम में आज को ये कार्यक्रम बारी हमारे गांव से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। काहे के दोस्तों घड़ी इशारों कर रही है कि माता दीन भैया आज आपको कार्यक्रम से जावे को समय इतना ही होगा है। सो दोस्तों अपन को समय को पालन करने पड़त है, समय को इंतजार करने पड़त है, समय अपनों इंतजार नहीं करत। सो अपन को भी समय के अनुसार चलने पड़त। जब समय के अनुसार अपन को चल रहे हैं तो देखो समय हमसे भी कह रहा है कि माता दीन भैया आपको समय हो गया है। सो दोस्तों हमें दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में और अगले गांव में अपन अगली नई बात को जाने और अपनी तपनी मुलाकात हो गए कार्यक्रम के माध्यम से। सो दोस्तों अब अपने माता दीन भैया को दो जावे की अनुमति और आप सब जन से आशा है कि आप और उनको जो कार्यक्रम पसंद आ हुई है। सो दोस्तों अब माता दीन भैया को दो जावे की अनुमति। नमस्कार। बारी हमारे गांव की,
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
3: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
3: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है
4: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने इस समुदाय से बात की थी और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
3: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथ

0: जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर महिला किसान।
1: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
0: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे हैं।
1: ले भाजी, अब तो नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे हैं, कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भाजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, भाजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि ने तुम मे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे ते हारे के हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भाजी, अब हम
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ ली, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता नहीं बता दे तो।
0: कहा कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा है भाजी, के ऐसी क्या बात है, तो ही बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सी बता दू ना, मैं कहा डाल लू ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आती, लेकिन इनसे कहा को मुझे कछु फायदा थोड़ी न पड़ रहा है गो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हुई तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारे नाम क्या
0: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
1: अरे आओ तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
0: अच्छा, तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, तुम्हारी कैसी है?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी,
0: ये दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा अभी भी आसों की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ाई जाने या तो खेती करने या तो जिनमें देखो जी, आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई, यही देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मरवे जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मरवे नहीं, पढ़वे जाने आते ही, पढ़वे जाने आते और खेती भी करनी है संगे संगे। देखो अब किसानी को गांव गाड़े को काम है तो सब करनी है आते ही।
0: हाँ वो तो यह नहीं है लालाजू, मैं जा कह रही तुम कहा डाल रहा थे, देखो तुझे भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो, और का को दुखन में आने से लग रहा है, कहा डाल रहा तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो, जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही, तुम्हें घर बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था ही का, तुम जाने का करा था जुम्मन, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजी, तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयां को इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा हो जाए, का पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आ तुम।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी तो
1: बाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकरी रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी, ते तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ, माँ में कहा सके वो
1: कहा घरे बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घरे बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही? तो मस्करी दिखा रही
1: और कही तो रही की घरे बना उसका दवाई बना, वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते होंगी, रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भाजी चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: कैसे चलो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: और ना ये कहो कीड़ा लगो, कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषक बुला लेते हैं, तो उनसे पूछत की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं, जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे,
0: चलो देखो अब देखो लालाजू, जो तो लगो मैं।

0: जी अभी मेरे टमाटर की पौधे सुबह लगा दे।
1: ओ भौजी तेरी फसल तो सांसों देखवे लाखेगी।
0: का कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जे, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो इतनी घरे बना था अपनी सब।
1: लेकिन भौजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
0: का कह रहे लाला जी टपक जा में लोटा धरे।
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बस तू टपक जा में।
0: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाथो।
1: मटका खाद
0: हाओ
1: वह कैसी बनाथ।
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पतो नहीं है मैं अपनी सब देसी खाद डालत हूँ उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते हैंगे। तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तुम जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं। उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है। कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी, उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसे तो थोड़ी ना बढ़ेगी। कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
4: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
4: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गया, उड़द हो गए, चना हो, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
4: हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके

0: हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है?
1: अपने हिसाब से यह है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
0: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
1: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआं अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊ होगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं,
0: चलिए, बहुत
1: क्या
0: अच्छा लगा
1: बता
0: लाला
1: सकते
0: राम
1: हैं।
0: जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
1: हमारा नाम है रईस यादव, लिधौरा नेवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा रही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
1: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो पता है टमाटर है आलू है, जल्दी जल तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है, मतलब गोबर खाद,
0: अच्छा
1: इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
0: अच्छा आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
1: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है। फिर
0: अगर जैविक
1: वो भी
0: खेती खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
1: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला है,
0: आय बढ़ती है? कैसे
1: आय
0: बढ़ती
1: बढ़ती
0: है?
1: है उससे, मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
0: अच्छा
1: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया टुकाई चलेगी उसकी।
0: धन्यवाद भाई
1: हाँ,
0: साहब।
1: ब्रज किशोर कुशवाहा।
0: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
1: हमें पता नहीं है,
0: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
1: नहीं है जानकारी सर।
0: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
1: अब जी हमें पता नहीं है सर।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष
2: लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
4: जीवन

संदेश सुन लो भैया जो संदेश खुशहाल बनो रे अपनो देश खुशहाल बनो रे अपनो देश सो करो आ करो सब जे बिक खे।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: आपका सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें,
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे, और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारी जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा है खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में सभी

0: में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, तो हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से। जी
1: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर, इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक
0: जी
1: खेती का?
0: जी जी इसके अनेक लाभ हैं, और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा,
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव है होगी,
1: जी
0: और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है,
1: जी सर
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही,
1: जी
0: साथ
1: सर
0: साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि
1: जी
0: अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के
0: जी
1: उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे। लेकिन श्रोताओं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें

जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं टालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो

0: जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कर्म, बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।

0: साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की, या फिर व्यक्तित्व विकास की, या फिर सफल कहानियों की, या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे, और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।

0: साथियों, अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों, 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है। भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती है, पीछे पीछे चली आती है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है से आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा बढ़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है, व्यक्तित्व विकास में हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों, कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा, बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है। आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों, आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास की जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी।

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो करें। सभी के बीच नॉनवेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
1: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह। इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए, अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुगा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई, इनको तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में हैं, तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है, और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है, और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर, जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, उसमें हम बिल्कुल सही उतरे, सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है। जिस साथ ही में हमारा पता भी है जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
0: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
0: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बात ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि

0: जितनी भी कहानी अपन और अन्य स्त्री में सुनी हैंगी, उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कुके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से वे आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी। तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा देंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।
1: अपना

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। कहाँ करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहा।
0: आंगनवाड़ी में होंगी। कितने साल से कर रही हैं?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ 20 साल से कर।
0: अच्छा तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम हमारे को झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में को है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो?
0: अच्छा आपके घर पे क्या काम हो? तो
1: वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सब देते हो। ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा 10 रुपया?
1: हाँ 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया में लगते है, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत
1: रहता।
0: अच्छा अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने? पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी का, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये खेल खेलते तो।
0: अच्छा
1: चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: सावन को चपेटा कलर।
0: अच्छा
1: जो खेल रहे
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? खेलत में गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा गीत ही नहीं आते? पहले तो गा सुनियो आप।
1: अबे भूल गए, तो बड़ा को ऐसे कछु नहीं आता।
0: इतने बड़ा को नहीं है आपको? लेकिन तो बड़ा को नहीं लगा था आपको?
1: नहीं बड़ा को काहे नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: कोनो नहीं गाते हैं।
0: आप गाते नहीं? अच्छा आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियन को जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना हो तो काउ को पुष्पा ना हो तो ऐसे सबके नाम होते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ मिल जाते
0: हो जाते,
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता
0: है। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी रहती, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलती?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिरा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते और हम तुमने फिरा कर दे रही तो भी पहन लेंगे और ये ही पहन रहा होता।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी हमने तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई थी?
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
0: बिल्कुल नहीं जानती।

0: अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखो तो
1: है?
0: पहले से देखो तो
1: है? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा था।
0: अच्छा
1: बेटे एक से तो आते ही हमारे बाप बताई आठ नौ साल के साथ नौ साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे सब नौ साल की शादी कर रही थी तो जिन दिन को काम कर रखते मेरी माताई ने कही क्या पाँच सौ रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने बोली तो मैं दस रुपया मिला तो पाँच सौ रुपया ले लो पाँच सौ चुका उन लोगों ने सबने सौ सौ रुपया फोन में मदाए थे।
0: अच्छा
1: हाँ तो वही मताई ने उठे कई में
0: पाँच सौ रुपया
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और दादा दे रहे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो
1: अच्छा
0: जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई है राधापुर में ससुराल है आपकी तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगी जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले पहले मंडप तेल लगाओ कर मंडप बो टीका
0: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह हो
1: तो तीन दिन को
0: तो बरात तीन दिन मिली रही थी
1: नहीं एक दिन तीन दिन मिली रही थी बरात
0: तेल
1: नहीं ब्याह तो टीका के दिन
0: अच्छा।
1: और फिर भावर मावर बरतती फिर वो दिन थोड़ी जाती बरात दूसरे दिन जाती
0: दूसरे दिन तो जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी हमारी जयमाला नहीं डरी मैं ना तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्केट से अपन खोलियन हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा
0: अच्छा
1: और जब तुम जो होट बल्लाल बापो बलाइस
0: अच्छा जो
1: सब पहला तो
0: मतलब
1: मड़वा के नीचे और खड़ो कर ला माई बुआ ने बोले चावल मार दे सबने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
0: गाँव रहे काका चढ़ा तो आपको
1: हमें पेजना चढ़ी थी एक किलो के वो खमगजा
0: एक किलो की पेजना
1: हाँ एक किलो के पेजना हाँ। खमगजा
0: बस
1: दो और जाई थे पैर रखते पैर नहीं थे
0: बाजू बंद
1: हाँ, हाँ। दे चढ़े थे
0: अच्छा
1: हाथ में
0: तो अब रखे हो आप
1: हाँ अब धरे बेन की बात
0: अच्छा दे
1: छह लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ले
0: अच्छा
1: कहाँ से आ
0: रहे सही बात है अच्छा आपकी विदा कहे वही थी
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
0: था
1: वही में वही थी पिता
0: उतर से इतना ही तक
1: जहाँ से नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
0: बैलगाड़ी में आए थे अच्छा इसी पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
1: हाँ ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा हो के हमारी गाड़ी गई से आई थी
0: अच्छा बैलगाड़ी झांसी से कैसा लगा तो आपको विदा हो रही आपकी और बैलगाड़ी से हो रही
1: बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हमारी का
0: अच्छा।
1: पहले जो के वाहन कहाँ थे ओरछा तक नहीं जाते खेलार तक नहीं जाते अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी
0: अब तो अगर उधर भी जाना
1: अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी से
0: जाना
1: है
0: सही बात है तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो ससुराल में कुकु मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी
0: अच्छा आपके में नंबर की
1: है दूसरे नंबर के नानी दादो
0: नंदन की शादी हुई
1: हाँ
0: अच्छा शादी के बाद
1: बड़ी हती
0: बड़ी हती अच्छा तो फिर आपके एते का करस में भाई मतलब कंकन छूटा
1: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे
0: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
1: खिचड़ी बनाई थी
0: और आपने खुद बनाई थी
1: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी
0: अच्छा
1: और चमचा से तरवा दी थी
0: नाम होगा तो आप
1: द्वारे में ओरेंडर हुआ दे
0: अच्छा ओरेंडर हुआ दे तो जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर का करने मिलो तो
1: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
0: हुआ देने
1: हाँ।
0: ये उल्टा नहीं हो रहा
1: पहले देता ही है तेल अभी भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा सास बहू से सास लेते हुए पैसा
0: अच्छा
1: चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ
0: धरे
1: लेकिन वो सास ले और अंडा तो और पे रखत बहू
0: अच्छा।
1: तो बेबी सास ले
0: अच्छा
1: जी की सास ना हो तो जेठानी
0: में तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलती सास तो आपके समय में खुला

0: नहीं हमारे समाज में नहीं
1: खुलती। अच्छा आपकी
0: छोड़ा खोलते जो
1: छोड़ा खोलते
0: जो छोड़ा
1: इगे भी पैसा
0: सास को सकती है जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो
0: महत्व हो जाए।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: छोटे आते तो कछु
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के कराती या लड़ाई होती
0: जेठानी के संग कराते लड़ाई का एक होती
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी ना सास से भाई कभी
1: नहीं होती आप सीधी आती दो जने
0: एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा से सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और सासरी में का काम होते आपके खेती
0: खेती होती रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाती रात ऐसे खेती होती से रात चलाते रहते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से
1: कितने बजे उठाती हैं आप
0: 4 बजे उठ जाते है 4 बजे से पी सकते 5-6 किलो नाच पीस लेते
1: 5-6 किलो रोज पीसने
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हूँ 4 बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती हूँ
0: कभी संगे कभी अलग अलग पी
1: सकती। अच्छा फिर उसके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम तो
0: दो बार वो बार डाल रखते
1: कितने गाय भैंसे होती है आपके
0: गला 10-12 गैया होती गोबर मोबर डालते झाड़ा झूठी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
0: फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा वहाँ से बहाने आते
0: नहीं बैलन से घर में नहीं आती लोग सब वही चलाते रहते कब हम सास जेठानी चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती है। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है
0: हमारा 6 लड़का
1: 6 लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है एक
1: लड़की नहीं है एक तो आपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
0: पढ़ाओ मैं परेशानी आती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हो गई।
0: हाँ सबकी हो गई सब सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
1: अच्छा नातीन की भी कितनी नाती है ये
0: 6 नाती है 6 नातने है।
1: अच्छा तो
0: बिलाती को मतलब बिलात
1: बड़ा परिवार है।
0: हाँ तो 6 लड़का है तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा, अच्छा
0: और 1 के 4 है बड़े के 3 मोड़ी है तो एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए
1: परिवार
0: है। 3 मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा 1 के छोटी 1 के मोड़ा होगा 1 के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
1: बहुत बड़ा परिवार है। आपको अच्छा लगा था ये त्योहार पे हुआ सब जने आ जाते हैं तो अच्छा लगा था ये ना। तो आप सुमाटा नहीं खेलती
0: हूँ
1: कैसा खेलती आप अपने
0: तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस फिर खेल
1: गाना भूलने नहीं आते याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप
0: 20 साल से ज्यादा हो गई
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी
1: कैसा लग गई थी मतलब
0: पहले उनने इन्हें 4 जनन के कागज दिए थे भर के तो सबने 200 रुपया में लगते तो सब जाना ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने हमें नहीं करने सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत
1: हाँ,
0: 350 में लगते हमें 200 रुपया
1: धीरे धीरे करके
0: तो फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 पेली नाच खावे के लाने बच जगह कर फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पेली नाच हम पानी भरे आते इनको तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो हमने बना था नहीं अभी
1: अच्छा।
0: जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भर उनको उन्हें खाए भी बेकी परेशानी से कि अब जैसे नहीं आते जो दे तो सकते खाओ नहीं करते तो को दे रहे
1: सही बात है
0: दे रहे तो को भी ना करो
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500
1: चलो
0: 350 है हमारे फिर 1500
1: धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो
0: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली फिर से जाकर
1: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें
0: चौपे में तो महत्व देखो आप सोच रहे आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और

0: जाते, लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे हैं।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के।
0: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़ दे की क्या सोच रहे हैं बताओ।
1: सही बात है, लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही है,
0: लेकिन नाम मिल रहा है पहले कहाँ मिला
1: था। पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के गाँव में पढ़ाई चाहिए है ना। बिल्कुल, तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती कि अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी को तो सब हमारी सब आठ आठ पढ़ी ना, तो नाती पढ़े
1: तो पढ़ाए चाहिए।
0: हाँ सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो को हुआ बड़ी मेरी हो गई सब सात सात आठ आठ में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो ना तो धन की।
1: बहुत बढ़िया, आप
0: दोनों को पढ़ दो, अब दो नाती पढ़ रहा है।
1: चलो बढ़िया माँ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो हैगो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो हैगो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो हैगो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कैवी को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़तो। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, क्या के आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब दम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैंगे या फिर

व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपनो समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार। और चला चला सुनो आप ये गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और मित्रों, खेत खलियान कार्यक्रम में आज विशेष कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जल जंगल जमीन की तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। तो किस तरीके से एक संकल्प यात्रा ददरुआ सरकार से चलकर यहाँ पर ओरछा आकर इन सारी प्राकृतिक जो संसाधन है और साथ साथ में गौ संवर्धन को लेकर बचाने के लिए कितनी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका एक अथक प्रयास डॉक्टर अजय मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आज हम उनको सुनते हैं।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि जब हम अपने पर्यावरण को एक बार देखते हैं और जब उस पर हम बातचीत करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर अजय मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। इन्होंने ददरुआ सरकार से ओरछा धाम तक एक यात्रा निकाली है, उस यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, साथ साथ में पर्यावरण, गौ संवर्धन, इन सारे मुद्दों पर आज हम विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। सभी मेरे भारत के देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से।
0: सर, जानना चाहेंगे कि जो आपने एक संकल्प लिया है, खासतौर पर बड़े सौभाग्य होता है कि इस तरीके की संकल्प यात्रा देश में निकालना, और खासतौर पर आपने एक संकल्प लिया है कि हमें गौ संवर्धन को बचाना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना है, और खासतौर पर कृषि को लेकर आप बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जानना चाहेंगे कि सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो यात्रा आपने सोचा था, उसका मुख्य उद्देश्य सर क्या था?
1: ये जो यात्रा है समाधिया जी,
0: जी
1: ये दरअसल विगत 10-15 वर्षों से यात्रा चल रही है
0: जी।
1: इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस सृष्टि में
0: जी
1: ईश्वर ने हम सभी को

0: भेजा है
1: जी
0: तो निश्चित इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर आने में हमारे परिवार माता पिता का योगदान होता है, जैसा कि विधि का विधान है।
1: जी
0: लेकिन जब हम जन्म लेकर जैसे जैसे बड़े होते हैं
1: जी
0: तो हमें बड़ा करने में प्रकृति का, परिवार का,
1: जी
0: समाज का,
1: जी
0: देश का
1: जी
0: बहुत योगदान होता है।
1: जी
0: इन सभी के लिए हमें काम करना चाहिए, निश्चित हमें माता पिता के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए।
1: जी
0: आज हम देख रहे हैं
1: जी
0: कोरोना काल में
1: जी
0: जब ऑक्सीजन की कमी हुई
1: जी
0: तो लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया
1: बिल्कुल
0: एक सिलेंडर के लिए, जो धरती माँ
1: जी
0: वर्षों से
1: जी
0: लाखों वर्षों से
1: जी
0: हमारी पीढ़ियों को ऑक्सीजन फ्री में दे रही है।
1: बिल्कुल सर,
0: और कभी कुछ ही उसने बिल नहीं भेजा,
1: बिल्कुल सर,
0: कभी कुछ मांगती नहीं है,
1: बिल्कुल सर।
0: तो उसके लिए काम करना
1: जी
0: ये सबका कर्तव्य है,
1: जी
0: सबका धर्म है।
1: जी
0: तो हमारा उद्देश्य है कि लोग पेड़ पौधे लगाएं,
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी को
1: जी
0: जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने
1: जी
0: हमें हरा भरा वातावरण दिया था,
1: बिल्कुल सर,
0: अच्छी खेती दी थी,
1: जी
0: उपजाऊ जमीन, आज हम लोग निरंतर अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से
1: जी
0: धरती माँ को बीमार कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज हमारी धरती माँ संकट में है।
1: जी
0: यदि धरती माँ संकट में होगी तो भविष्य में हमारा जीवन संकट में आ जाएगा।
1: जी
0: तो आने वाले पीढ़ी का जीवन संकट में ना आए,
1: जी
0: इसके लिए ये जन जागरूकता कार्यक्रम हमारा चल रहा है।
1: जी ये सर कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें किन किन चीजों को आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया है सर?
0: इसमें मैं ये मानता हूँ
1: जी
0: कि हमारे जो बुजुर्ग हैं
1: जी
0: उनकी जो कहावतें हैं
1: जी
0: लोगों के लिए वो कहावतें होंगी, मेरे लिए वो जीवन का मूल मंत्र है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है
1: जी
0: कि उत्तम खेती
1: जी
0: मध्यम बांझ।
1: बिल्कुल सर।
0: एक और कहावत है
1: जी
0: कि पहला सुख निरोगी काया।
1: बिल्कुल सही है।
0: यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है
1: जी
0: तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है।
1: बिल्कुल सर।
0: एक स्वस्थ शरीर में
1: जी
0: स्वस्थ विचार आते हैं।
1: जी
0: जब विचार हमारे स्वस्थ होते हैं
1: जी
0: तो हमारे कार्य स्वस्थ होते हैं
1: जी,
0: और जब कार्य स्वस्थ होते हैं तो हमारा जीवन भी समृद्ध होता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो स्वास्थ्य के लिए
1: जी
0: चूंकि मेरा सौभाग्य है
1: जी
0: कि मुझे मेरे देश के महान लोग जैसे कि प्राकृतिक खेती में आदरणीय सुभाष पालेकर जी,
1: बिल्कुल सर,
0: आदरणीय डॉक्टर हमारे त्रिपाठी जी
1: जी,
0: आदरणीय हमारे कुंडू साहब
1: जी,
0: इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है। तो मैंने उनसे जाना है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि धरती माता ने हमारे देश में एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य को प्रकट किया है जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश टाटा, जो विश्व के एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं। भारत की जड़ी बूटियों का झंडा लेकर 122 देशों में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे उनका भी सानिध्य मिला। आदरणीय आचार्य मनीष जी,
1: जी
0: जो हिम्स हॉस्पिटल है, उनके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल
1: जी,
0: जीना सी को जो उनका कार्यक्रम है
1: जी, जी, जी,
0: ये ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य है कि हमारा देश जागे।
1: जी बिल्कुल।
0: बीमार हो के आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई
1: जी
0: खर्च ना करके
1: जी
0: आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने पहला शुरुआत की खेत से कि स्वास्थ्य के लिए
1: जी
0: अगर कोई दुनिया में, इन सबसे मेरा एक ही सवाल था
1: जी, जी,
0: कि आप तो मुझे ये बताओ कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते
1: रहे। बिल्कुल सर।
0: समाज स्वस्थ कैसे रह सकता है
1: जी।
0: तो सबका एक ही जवाब था कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन के अलावा दुनिया में कोई दवाई नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम भोजन शुद्ध करते हैं
1: जी
0: तो वो भोजन दवा का काम करता है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो भोजन दवा बन सकता है
1: जी,
0: दवा कभी भोजन नहीं बन सकती है। तो आपके माध्यम से मैं मेरे देशवासियों को ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन की जो आपकी दिनचर्या है उस पे ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: जिस तरह हमारे बुजुर्ग सुबह 5 बजे उठ जाते थे
1: जी,
0: शाम को सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लेते थे
1: जी,
0: क्योंकि जब रात्रि में बहुत लेट हम भोजन करते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो जो प्रकृति ने हमें जो भोजन पचाने की मशीन दी है
1: जी,
0: जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं
1: जी सर,
0: वो मंद हो जाती है। तो भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ता है,
1: सड़ता है।
0: जब भोजन सड़ता है तो कई विकार पैदा होते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध भोजन और हमारी जो दिनचर्या है इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बीमार हैं
1: जी
0: तो आयुर्वेद पे विश्वास करो।
1: बिल्कुल।
0: आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति

0: है, और आज के समय में
1: जी
0: उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं।
1: जी
0: हमारे डॉक्टर प्रकाश टाटा जी और
1: जी
0: आचार्य मनीष जी
1: जी
0: निरंतर रिसर्च कर रहे हैं।
1: जी
0: तो आज हिम्स हॉस्पिटल में
1: जी
0: जो लोग 100-100 कीमो ले चुके हैं
1: बिल्कुल सही,
0: कैंसर में, वो लोग भी वहां आ रहे हैं
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: ठीक
1: जी,
0: हो रहे हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: किडनी फेलुअर लोग आ रहे हैं,
1: बिल्कुल सही,
0: वहां लीवर फेलुअर लोग आ रहे हैं
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया,
0: ठीक हो रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: ये जो हमारा स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है,
1: जी
0: इसमें आदरणीय डॉक्टर प्रकाश टाटा जी,
1: जी
0: आचार्य मनीष जी
1: जी
0: और हम तीनों लोग मिलकर ये
1: बिल्कुल
0: स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन का झंडा लेकर
1: जी
0: भारत में गांव गांव जाने का हमारा प्रयास है और
1: बिल्कुल
0: समाज को जगाने का हमारा प्रयास है।
1: सर, एक चीज हमारे मन में चूंकि बहुत दिनों से भी खटक रही थी
0: जी
1: लेकिन उसका जवाब हमें कहीं सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, हमें कहाँ कमी देखने को मिल रही हो, खास तौर पर हम अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में लोग खेती पर आश्रित रहते हैं, समस्या यहां पर यह आती है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, समस्या उनका मानना यह है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करने जाएंगे तो उसके लिए हमें 4 या 5 साल वेट करना पड़ेगा, उसमें सर आपका क्या मानना है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए इसमें?
0: मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में सफलता और असफलता निर्भर करती है कि आपका सलाहकार कौन है।
1: बिल्कुल सर
0: महाभारत की कथा हम सबने सुनी है,
1: जी
0: कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद ही उनकी पराजय हुई,
1: बिल्कुल सर
0: क्योंकि उनके जो सलाहकार थे
1: जी
0: वो शकुनी थे।
1: बिल्कुल सर
0: पांडवों के पास छोटी सेना थी
1: जी
0: फिर भी वो विजय हुए,
1: बिल्कुल सर
0: क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो
1: जी
0: जब भी जीवन में कोई काम आप करते हैं
1: जी
0: तो मैं किसान भाइयों से ऐसा आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छे सलाहकार के साथ जुड़िए। तो हमारा स्वच्छ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन किसानों के लिए सलाहकार के रूप में काम करता है। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में
1: जी
0: हमारे बुंदेलखंड के ही मैं बात करता हूं,
1: जी सर
0: बुंदेलखंड के उरई
1: जी
0: के पास एक गांव है
1: जी
0: कुकर गांव,
1: जी जी
0: वहां के हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं
1: जी
0: शिव शंकर चतुर्वेदी जी।
1: जी जी जी
0: तो 2019 में हमारी उनके साथ मुलाकात हुई,
1: बिल्कुल
0: तो मैंने उनको समझाया
1: जी
0: कि आप एक अपने खेत पे एक बागवानी का एक मॉडल तैयार करिए,
1: बिल्कुल सर
0: तो ऊपर आपको फल मिलेंगे, नीचे आप इंटरक्रॉपिंग में आप खेती करिए
1: जी सर
0: और जो आपकी मेड़े हैं
1: जी
0: उन पे आप ऐसे पौधे लगाइए
1: जी
0: कि जो आपको लॉन्ग टाइम में
1: जी
0: एक अच्छा पैसा आपको रिटर्न मिल सके।
1: बिल्कुल सर
0: किसान को प्रेजेंट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम,
1: जी
0: यानी आज कल और परसों, जैसी
1: परसों
0: हमारे यहाँ कहावत है
1: बिल्कुल सर
0: भाई, आज हमें जरूरत है हमारा घर चलाने के लिए,
1: बिल्कुल सर
0: कल हमें हमारे बच्चे के या किसी के कोई शादी विवाह के लिए कार्य पैसे की आवश्यकता है,
1: जी
0: हमें 20 साल बाद हमारे बच्चों की कुछ और कोई कार्यक्रम करेंगे, तो
1: बिल्कुल सर
0: उस तरह की प्लानिंग करके
1: जी
0: वहां हमने एक मॉडल बनाया है।
1: जी
0: तो मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि इस
1: जी
0: मॉडल को आप भी प्रमोट करिए।
1: बहुत बढ़िया
0: उस मॉडल को हमने नाम दिया है खेती का एटीएम,
1: बहुत
0: यानी
1: बढ़िया सर
0: किसान को ऑल टाइम पैसा कैसे
1: पैसा
0: मिले।
1: बिल्कुल सर
0: तो वहां हमने व्यवसायिक खेती में अमरूद, नींबू
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: एप्पल वेयर लगाया हुआ है।
1: जी
0: तो क्या होता है कि अभी हमारा एप्पल वेयर चल रहा है,
1: बिल्कुल सर
0: फरवरी में चालू हो जाता है,
1: जी
0: फिर हमारा अप्रैल मई से हमारा नींबू चालू हो जाएगा
1: बहुत बढ़िया सर,
0: और अक्टूबर में हमारा अमरूद चालू
1: आलू
0: हो
1: चालू हो
0: जाएगा।
1: जाएगा
0: तो
1: बहुत बढ़िया
0: 12 महीने हमारे शिवशंकर चतुर्वेदी जी को
1: जी
0: पैसा मिलता
1: आमदनी
0: है।
1: बिल्कुल सर
0: नीचे हम लोगों ने हल्दी लगाई हुई है,
1: जी जी जी
0: अभी हम लोग हल्दी में प्लान कर रहे हैं, कल भी हमारी बात हुई थी कि इसे हल्दी को ले उखाड़ के
1: जी
0: और इसका हम चिप्स बनाएंगे,
1: बिल्कुल सर
0: चिप्स बना के हम सेल करेंगे,
1: बहुत
0: क्योंकि आजकल मिलावटखोरी बहुत चल
1: बहुत
0: रही है।
1: ज्यादा बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: हम ये चाहते हैं कि लोग प्योर प्योर ऑर्गेनिक
1: जी
0: और बिल्कुल एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट लें।
1: बिल्कुल सर
0: चिप्स होने से फायदा ये होगा
1: जी
0: कि वह जो भी खरीदेंगे
1: जी
0: आराम से अपने घर की मिक्सी में उसका पाउडर बना सकते हैं,
1: बिल्कुल सर
0: तो उसमें चिप्स में कोई मिलावट नहीं हो सकती।
1: जी
0: अपने घर में आप पाउडर बनाएंगे
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: वो एकदम ओरिजिनल बनेगा,
1: बिल्कुल सर
0: 100% ऑर्गेनिक है।
1: बिल्कुल सर
0: तो उस मॉडल को
1: जी
0: जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों से
1: जी
0: कि उरई के पास कुकर गांव है, शिवशंकर चतुर्वेदी जी के मॉडल पे
1: जी
0: आप लोग जरूर जाइए। वहां
1: बिल्कुल
0: सैकड़ों किसान आते हैं, उस मॉडल को देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं।
1: जी
0: वहां जब सुन के और जब हम देखेंगे
1: जी,
0: तो हमें विश्वास होगा
1: जी,
0: कि नहीं ये भी संभव है और ऐसा हो सकता है कि एक हेक्टेयर से भी किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन में आप जुड़िए। हम कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क जोड़ते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, किसी प्रकार का कोई परामर्श शुल्क नहीं लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े, आपको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बागवानी, मिश्रित खेती और स्वावलंबन के बारे में हम पूरा आपको प्रशिक्षण देंगे।
1: बहुत बढ़िया, क्योंकि सर एक चीज और उसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हम लोगों ने भी सर 2009 में इस तरीके की मुहिम एक छेड़ी हुई थी कि शुभ कल, आने वाला कल किस तरीके से शुभ हो। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक हमारी परियोजना थी सर, उसमें हमने 100 गांव में इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, जैसे कि किचन गार्डन हुआ सर, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हम जो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं उसको लेकर हम लोगों ने एक जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति गेम खिलाया गया था, उसी तरीके से हम लोगों ने खिलाया था। समस्या ये आई थी कि शुरुआत में थोड़ी हमें कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने जब इस तरीके की परियोजना में देखा सुना तो वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। समस्या अब यहाँ आई है जब परियोजना हमारी बंद हो गई है। परियोजना बंद होने के बाद 1-2 साल उन्होंने प्रयास किया कि इस क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ाएं। अब समस्या वहां पर ये आ रही है उनको कि मार्केटिंग की समस्या है कि हम कहाँ पर, चूंकि जब ऑर्गेनिक को लेकर हम बाजार में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का उगा हुआ ये चीज है, इसको आप खरीदेगा थोड़ा रेट आपका बढ़ के मिलेगा। समस्या ये आती है कि लोग उसको सुनते नहीं है। इसमें सर आपकी क्या राय है, किस तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे?
0: निश्चित सवाल यह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें हमारा जो स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है
1: जी,
0: इसका काम यही है
1: जी।
0: जैसे हमारा किसान है
1: जी,
0: तो किसान गांव में है
1: जी,
0: उनके पास उत्पाद तो है
1: जी,
0: लेकिन जैविक या अपना नेचुरल प्रोडक्ट है
1: जी,
0: बहुत हमारे ऐसे लोग हैं
1: जी,
0: जो ये प्रोडक्ट चाहते हैं
1: बिल्कुल,
0: उन्हें मालूम नहीं है ये क्या है, दोनों के बीच में गैप
1: है बिल्कुल।
0: गांव में जो व्यक्ति बैठा है वो इसलिए नर्वस है कि मैं पूरा प्राकृतिक कर रहा हूँ, मेरा उत्पादन भी कम हो रहा है लेकिन मुझे दाम अच्छा नहीं मिल रहा है
1: बिल्कुल।
0: शहर में जो लोग बैठे हैं वो इसलिए परेशान है कि पैसा पूरा खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। शहर में भी हम लोग सदस्य बना रहे हैं और गाँव में भी हम लोग किसानों को सदस्य बना रहे हैं। शहर में हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है खुशहाल जिंदगी। खुशहाल जिंदगी हम कैसे जिए, शुरुआत वहीं से होती है, भोजन से। शुरुआत भोजन से ही होगी
1: जी, जी, जी, जी,
0: जीवन में समाधिया जी,
1: जी
0: खुशहाली बिना हेल्थ के संभव
1: नहीं है।
0: अगर आप हेल्थ से अच्छे हैं तो आप सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के साथ जुड़े। आपकी जो मार्केटिंग की समस्या है उसका भी हम लोग मिलकर हल निकालेंगे। नंबर दो
1: जी,
0: आज के समय में
1: जी,
0: हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं
1: बिल्कुल,
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अब वक्त गांव का है
1: बिल्कुल।
0: गांव का इसलिए है कि शायद जो पश्चिमी सभ्यता है
1: जी,
0: उसका भोग भोग के अब लोग थक चुके हैं
1: बिल्कुल।
0: अब लोग गांव में जाना चाहते हैं
1: जी।
0: अभी हमारे यहाँ भारत में ग्रामीण टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है
1: बिल्कुल।
0: अब लोग शहर में की अपेक्षा
1: गांव में
0: रुकना पसंद कर रहे हैं। आपके यहाँ नजदीक में लाड़पुरा गांव है, वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं
1: बिल्कुल।
0: वो जो वहाँ पे होम स्टे हैं, 2-4 लोगों का मेरा परिचय है, मैं पूछता रहता हूँ कैसा चल रहा है, बोले सर बहुत अच्छा चल रहा है, यात्री आ रहे हैं। तो अब लोग गाँव की तरफ लौट रहे और लोग देसी प्रोडक्ट की तरफ लौट रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे होटल बन गए हैं जहाँ देसी भोजन मिलता है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। शहरों में भी अब लोग ये सब पूरी पराठा और फास्ट फूड छोड़कर अब लोग दाल टिक्कर को लोग पसंद करने लगे हैं
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा ऐसा आग्रह है मेरा ग्रामीण भाई बहनों से, नौजवानों से, किसानों से कि निराश मत होइए, समय आपका आ रहा है इस और आपको काम करने की जरूरत है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारे जो सोशल मीडिया है उस पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए, और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगी, आप अच्छा प्रोडक्ट

0: बनाइए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लाइसेंस क्या चाहिए, ये इस तरह की जो सहयोग चाहिए तो वो हम उनको करेंगे। ये आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर। और बस लास्ट में हमारा एक सवाल है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, बहुत सारे दिन में मन में सवाल चलते हैं कि आज पहले कितना जंगल हुआ करता था, खासतौर पर अगर ओरछा की ओर देखा जाए। आज हम जान रहे हैं कि नई देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सिटियां बन रही हैं, डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो जंगलों की कटाई खासतौर पर देखने को और सुनने को मिल जाती है, तो मन में काफी मतलब दुख होता है कि इस तरीके का जंगल हुआ करता था, अब नहीं है। आपका क्या मानना है सर?
0: इसमें मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एक मैं छोटी सी एक कहानी इसमें जोड़ता हूँ। एक दूध देने वाला व्यक्ति था, गांव का सीधा साधा किसान, बाजार दूध देने जाता था और वहां से उस बेकरी से वो 1 किलो बेकरी लेके घर पे आता था। एक दिन उस दुकानदार ने कहा कि मुझे 1 किलो घी चाहिए। तो वो दूसरे दिन घी लेके आ गया। दुकानदार ने जब उसको तोला तो घी 800 ग्राम निकला। दुकानदार ने उसके ऊपर केस कर दिया। केस कर दिया तो वो अदालत में पेश हुआ किसान। तो जज साहब ने कहा कि तुमने चीटिंग की है और तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दायर हो गया है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो किसान ने कहा, मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है।
1: बिल्कुल।
0: तो जज साहब बोले कि तुमने इन सेठ जी को 1 किलो की जगह 800 ग्राम घी दिया है। तो उसने कहा, हजूर मैं तो किसान हूँ, मेरे पास तो तराजू भी नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये सेठ है। मैं इनके यहाँ से 1 किलो वो लेके गया था, अभी बेकरी 1 किलो बेकरी लेके गया था, उसी के बदले मैंने घी तोला।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये है। आज क्या हो रहा है, हम लोग एक ही ओर दौड़ लगा रहे हैं, पैसे की ओर।
1: बिल्कुल सर।
0: जब पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तब हम ना नदी का ध्यान रखेंगे, ना पौधों का ध्यान रखेंगे, ना परिवार का ध्यान रखेंगे, ना समाज का ध्यान रखेंगे।
1: बिल्कुल सर।
0: मेरा स्पष्ट मानना है कि ठीक है, पैसा आवश्यक है, लेकिन जीवन में केवल पैसे से ही अगर आप समृद्ध हो गए तो आप समृद्ध नहीं है।
1: बिल्कुल सर।
0: आपको परिवार से भी समृद्ध होना है
1: जी,
0: आपको समाज से भी समृद्ध होना है
1: जी,
0: आपको शरीर से भी समृद्ध होना है
1: जी।
0: इन सबसे अगर समृद्ध होना है तो हमें बैलेंस समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो नदी है, जो तालाब है, जो पहाड़ है, जो पक्षी है, जो जीव जंतु है, हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये वो धरती है जहां सबको जीने का अधिकार
1: है।
0: और सहजीवन, हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को नष्ट करें या किसी को समाप्त करें। जिस दिन हम पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, ऑक्सीजन कौन देगा?
1: बिल्कुल सर।
0: आपकी ये जो घमंड है पैसे का
1: जी,
0: भूल गए 5 साल
1: जी,
0: पिछले 2020 में सारे घमंड चूर हो गए थे ना।
1: बिल्कुल सर।
0: प्रकृति का ये छोटा सा रूप
1: जी,
0: जिसे पूरी दुनिया सह नहीं पाई,
1: बिल्कुल सर,
0: ये रूप
1: जी,
0: कभी दोबारा ना बने। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से कि अपने जीवन में आप अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर हजारों लाखों खर्च करते हो
1: जी,
0: करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, भगवान ने आपको दिया है, खूब खर्च करो
1: जी,
0: लेकिन जिस पृथ्वी ने, जिस धरती माँ ने हमें जीवन दिया है और हमें सांसें दे रही है, उसके लिए हर साल कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति जरूर लगाए, ये अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अगर हम एक एक पौधा लगाना शुरू करेंगे तो देश में हर साल करोड़ों पौधे लगने लगेंगे और धीरे धीरे क्लाइमेट की जो समस्या है इस पर नियंत्रण होगा।
1: बिल्कुल,
0: जरूर होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: और गौ माता के लिए मैं जरूर कहूंगा
1: जी,
0: कि आज जो गौ माता दर दर भटक रही है, मेरा आप सबसे आग्रह है, कोई चीज जब हमारे जीवन में नहीं होती है ना तब हमें उसका एहसास होता है। एक चीन की घटना है, मुझे ठीक से सन याद नहीं आ रहा है, तो वहां किसी ने प्रधानमंत्री को सलाह दे दी होगी कि जो फसल में जो गौरैया चिड़िया होती है ये बहुत नुकसान करती है, बोले इस गौरैया चिड़िया को पूरा समाप्त करवा देना चाहिए। और पूरा चीन गौरैया को मारने में लग गया। अंत में परिणाम ये हुआ, गौरैया तो मर गई लेकिन फसल में इतने कीड़े आ गए कि वहां लाखों लोग भूख से मरे, लाखों लोग भूख से मरे। तो जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं हमारा, हमारे खेत में केंचुआ हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जो हमारे खेत में लाखों छेद करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जब बरसात होती है उन्हीं छेदों से धीरे धीरे पानी अवशोषित होता है और वही पानी हमको पीने को मिलता है। हमारे जो चूहे है, कछुआ है, सांप है, एक भी चीज प्रकृति ने व्यर्थ नहीं बनाई है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एक भी योजना चलने वाली नहीं है। आप कितने भी प्लान कर लो
1: जी सर,
0: आज जितने बड़े बड़े किले हमको खाली दिख रहे हैं, क्या उन्होंने प्लान नहीं किया होगा कि इसमें हमारा परिवार रहेगा, हमारी पीढ़ियां रहेंगी? क्या वहां रह रही हैं आज? नहीं रह रही ना, सारे किले खाली पड़े हैं। तो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर जो धन इकट्ठा कर रहे हो, इससे आपकी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी। पैसा कमाइए ईमानदारी से। आज जो मिलावटखोर लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, अरे हम एक दूसरे को जहर देंगे, एक दिन हम सब नष्ट हो जाएंगे। हमें खुद सुधरना है, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। दुनिया को मत सुधारो, एक पौधा साल में एक बार हमें लगाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। गाय माता को हम अपने घर पे नहीं पाल सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हिंदू होने के नाते हम अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में कम से कम एक धूप बत्ती सुबह और एक धूप बत्ती शाम को लगाते हैं। यही धूप बत्ती यदि हम गौ माता के गोबर से बनी हुई खरीदना चालू कर दें, तो भी आप गौ भक्त कहलाएंगे। जब आप धूप बत्ती खरीदेंगे, धूप बत्ती की मांग बढ़ेगी, तो जो हमारे गौ भक्त गौ माता को पाल रहे हैं वो और ज्यादा गौ माताओं को पालेंगे। तो मेरा जहां भी इस आपके जो चैनल को लोग सुनते हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम आप लोग अपने घर में गौ माता से बने हुए उत्पादों का उपयोग शुरू कर दीजिए। गौ माता भक्त आप कहलाएंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। ये निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का भी एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं उसको, समय का भी चीज रहती है कि एक कार्यक्रम को एक समय रहता है। तो हम आगे ना बढ़ते हुए सर आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और खास तौर पर उन साथियों से फिर से दोबारा सर के माध्यम से, चूंकि सर ने अपील की है और हम भी अपील रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जो सर ने संकल्प के लिए बात बताई है वो संकल्प आप जरूर लीजिएगा। हमें गौ माता को बचाना है, हमें देश को बचाना है, हमें अपने जल जमीन और जंगल को भी बचाना है, और इनकी प्रतिज्ञा हमें करनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
0: बहुत बहुत धन्यवाद समाधिया जी आपका, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एक प्रयास करने चाहिए, एक मुहिम हमें चलानी चाहिए, और खासतौर पर इन सारी चीजों को अगर हमें बचाना है, प्राकृतिक चीजों का जो हम दोहन कर रहे हैं उनको हमें बचाना होगा। साथ साथ में हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बातचीत कर रहे हैं तो उसको अपने खेतों में अपनाना होगा। साथ में गौ संवर्धन को लेकर, गौ माता को बचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है उस पर हमें एक बार फिर से विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस विशेष कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी इसे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर करेंगे। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। अब आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और यदि आपको कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

देखो दोस्तों, जो कितनो बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूढ़ रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जापान सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों यही के संगे संगे बिलादरी से अपने स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुने थे अपने एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।